0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश्य कुतो सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: तेहिन प्यानी उन्वांस्य मरण तुत्ताने सीपत कर्मीन जीवन दायक पूप्यात गैलवीम दायक कुशलाना तप्य बट पुद कर्म ओब हम सिटमिन बट सेवे खरानट अप सुदुसान वाचिन सल की मगन अप्यो बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महंस्य श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशे निक सत्कर्णु लबन लिस अपि अवनतवा आयद सिटिमो स्वामिनी मुल्लो वे पेतर पवत्ना उबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगे सभाव दयागुणेन पिरिपुन्वान्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुर तैतु मेघ यापगे सहोदर सहोदर यंद उबगे दयानुकम पावकर विश्वास कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वितटोन खेन्दवागत मैनव अप सियालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत दे मातावन खनि मरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन उबगे खमत्ते टुकल सील शुद्धवंत इंद समग अपिद सदा जीवने सहभागी वीमट सुदुसान कल मैनव तवद उन्हा समग उबट प्रशांत सा किरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन महंसे मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहांसे मगिंद उन्वहांसे समगद उन्वहांसे करेद सियलो बालते देवी प्याननी शुद्धात्मन हा समगे क्वडवासन्ना ऊ उब वहांसेट सकल गौरवयात महिमे

याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।